उस गोविंद दे गुण नहीं गाए, जन्म बिरथा गवा लिया, ओदा सिमरन इस तरह कर जिस तरह मच्छी

इस जवानी नू बुढ़ेपे ने काबू कर ले, बुढ़ेपे ने जीत ले, हाले भी तू सिमरन नहीं करदा, तेरी उम्र बीतती जा रही है।

सारे सुख देने वाला एक कोई और आम है, कोई और नहीं। ओदा सिमरन कर तेरी गत हो जाएगी।

लोको ए शरीर 75 साल का बने है अते जिसने ए जीव बनाया है उसके विच ही आखिर समा जाना है।

ना दुख दा दुख, ना जिदे विच लोभ है ना अहंकार है। ऐ भाई ओहो इंसान भगवान दी मूरत।

निंदिया की थी तामी कोई परवाह नहीं, जिदे वास्ते सोना ते लोहा एक समान है, पाई ओ इंसान मुक्ति नु प्राप्त।

सुपने विच कदी बड़ा दुख भोगद, बहुत तड़फद, कदी बड़े सुख भोगद। बड़ा दुखी होंद कई वरी, कई वरी सुखी होंद। जदू जाग खुल गई ते कहिंदा ओ मना, तू ते सुपना देख रहा सी। तो गुरु साहब जी कहिंदे ने, भाई तू सचमुच सुपना पिया देख दे, तू सुता होया, तू जागना उदों है जदों तेरी मौत होनी है।

हर रोज दिन रात माया वास्ते इंसान भटकता फिरता है, पर करोड़ों दे विच कोई विरला इंसान है जिहड़ा परमेश्वर का सिमरन

तेज बलन दे नाल पानी उबलदा है ते बुलबुले उठदे ने पानी ते। गुरु साहिब जी कहंदे ने भाई जिस तरह ओ बुलबुले उठदे ने पानी दे ते खत्म हो जांदे ने, इस तरह ही इस संसार की रचना भी इस तरह की।

दुखी हो गया ते सारिया ने साथ छड़ दिता, पर याद रख सारे साथ साथ छड़ जांदे नहीं, पर एक परमेश्वर जिहड़ा है वो हमेशा सहाई रहिंदा।

बचपन जवानी बुढ़ेपा तेन अवस्था समझे के भजन तू बगैर तीनों अवस्था एवं गवा ली भजन तू बगैर बिरथिया नहीं।

झूठे मान क्यों कर दे जगत नु सुपने दी तरह समझ कुछ भी तेरा नहीं। गुरु नानक ए गल सच्ची कहंदे करदा मालिक सारी उम्र तियां पुत्रां दी पालना करदा पाप करके कमाई करदा दिन रात भज फिरदा माया वास्ते जदू मरदा वेड़े विच पिया हुंदा फट्टे ते पांदे ने जिन्ना तियां पुत्रां दी पालना की थी फिर ओही कहंदे ने एदियां जेबां फोड़ लो घर दियां चाबियां तां नहीं जेब विच किधरे माया वाला बटुआ तां नहीं पाया जे पाया है तां कढ लिया हाथ देख लो कोई सोने दियां अंगूठी तां नहीं पाई कड़ी तां नहीं पाई जे पाई तो ओ भी ला ली जिस चंगा सूट पाया तां ओ भी ला लैंदे ने घर दा मालिक इक कफन पा के ओही तियां पुत्र लै के तुर पैंदे ने शमशान घाट लै गए जे कफन चंगा है ते कई वारी साड़न वाला ओ भी ला लैंदा माड़ा जा कफन रह गया ते फिर अग कहंदी भाई आया ते नंगा सी ये कफन किथे लै चले है ओ कफन अग सांभ लैंदी शरीर भी नाल नहीं जांदा ते गुरु साहब जी कहंदे ने भाई तू जिन्ना वास्ते पाप करदा है किसे ने भी तेरा साथ नहीं देना ओना ने तेनू नंगा करके घरों बाहर कढ़ना है क्यों झूठे मान करदा है कोई भी तेरा नहीं।

बंधन पै गए, कुछ भी उपाय नहीं हो रहा। ऐ परमेश्वर हुण तेरा ही आसरा है, मेरी रखिया कर, जिवें तंदुए तू गज हाथी दी तू रखिया।

अन्न पदार्थ ने किसी ने भी तेरा साथ नहीं देना। एक परमेश्वर का सिमरन है जिन्हें तेरी सहायता करनी ता पाई उस गोबिंद दे गुण गा ताकि तेरा जिड़ा जन्म है।

0: ये भाई शालो खड़े ने ओ भाई शालो तू खड़ा है कहंदा जी मालक घर आया होवे चल के ते सेवक बैठ जे ये ओ ध्यान करो जेड़े खंड पाठ घरां च रखांदे हो ते गुरु प्यारे हो बाबा जी दा वचन है पुंजे लक लाना चाहिए लाना दो दिन दो रातां जेड़े महाराज दे प्रकाश घर आ जान खंड पाठ होवे पलंग ते कहंदे से नहीं सत्कार वजो पुंजे लक ला कोल चोर साहब घर कोल पाठ सुन मालक आया जिथे नहीं समझ उथे रमता वेले आ जाणगे ते भोगले कमरे च वड़नगे भावना होवे मालक आया दर खड़ा सेवा करे हक
1: सतनाम
0: भाई शालो खड़ा जी मालक आया हो ओ तू तिलक पिया असी तेरा पता लेना है तू खड़ा दयालता च आ गए ओ भाई शालो दस तेरे इसे स्थान ते सरोवर बना दी कहन लगे नहीं महाराज उस स्थान दी गुरु रामदास जी स्थान दी बराबरी नहीं करदे आखो सतनाम चंगा फिर भाई शालो इत्थे टोबा पर वर देने आ इत्थे नपुत्यां नूं पुत मिलणगे भाई शालो तेरे प्यार दा सदका तू बाणी नूं सिमरन नूं हिरदे च वसाया इत्थे सुके बच्चे हरे होणगे लोकां दीआं संगतां दीआं मनोकामना पूर्ण होणगीआं संगत इक अंदाजा ला लो कि गुरबाणी जेड़ी है केवल झोली भरण तक सीमित नहीं अगों झोलियां भरण वाली बना दें छेवी विशेषता ही है डट के गुरबाणी नाल जुड़ो तो गल सारी मैं देखी भावना की है निश्चय की है इथों तक निश्चय ना रखे हो मेरी झोली भरनी के नहीं तां खड़े हो निश्चय ओ मैं की इत्थे अगां झोलियां भरण वाला भी बना सकदी कोई इनू हिरदे नाल इहदी खुराक बनावे सही कोई जुड़े सही।

对对。ये ती गुड़ी नींद आई है, ये एक मेरी पास्ता भी नहीं पाई। निरंकार ने वडेरी अवस्था विच इको एक पुत जिता है और उसनु कोई ना कोई रोग लगा ही है। कोई उसनु चला कहना है, कोई दीवाना कहना है, कोई बावला कहना। मैं चुप कर गया। मैं खामोश हो गया। लोकां दे बच्चे खेल दे सन पर मेरा लाल कदे भी नहीं खेल। होर बच्चे माता पिता तो आके चीजा मंगदे पर मेरे नानक ने मेरे को कदे भी कुछ नहीं। तीन दिन हो गए प्रसाद नहीं छके, पता नहीं किड़ा रोग। अंदर जाके सुता है, तीन दिन तू मेरा लाल भोजन पाया है। जे धन गुरु नानक पातशाह जी ने भोजन नहीं छके ता ममता दी मारी हुई मां माता तृप्ता ने भी मुंह च बुरकी नहीं पाई। जिस मां दा पुत भुखा सो गया उस मां नूं नींद नहीं दी। पुत सो गया है, मां जाके उठा दी, काका भुखा क्यों सो गया? एक बुरकी तो मुंह च पाए, मां दी आंदरा ठर जा। बच्चा रज के प्रसाद छक लवे, मां पहले रज। ते मां दा प्यार माता प्रीत करे पुत। माता तृप्त इना करना इना विचारा विच क्योंकि माता तृप्ता हजूर नू पुत्री सुन। गुरु नानक एक पर वेखण वाली वखो वक्त। तृप्ता ने जाने सुत, कालू ने जाने पुत, लालू भतीजा जाने मूले जाने ते जवाई, चंदो रानी जाने सरबंदी, जय राम साला जाने पर बेबे नानकी ने जाने रब रूप मेरो भाई। श्री चंद लक्ष्मी दास ए जानत निज बाप कर, पराए बुलार को प्रतीत भली आई है। श्री गुरु अंगद साहब ए जानत अकाल रूप ते मूर्खों ने जानिया गुरु नानक को, जिन्हां नूं भावना दी रोशनी दी, जिन्हां नूं भावना दी लाइट नहीं मिली, उन्होंने मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी नूं पुराई आती। भावना सब तो वड्डी चीज, जितने तक सानू अपने गुरु ते पूर्ण विश्वास नहीं आएगा उतने तक अंदर ज्ञान दा प्रकाश नहीं हो सकता। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मिल गया। विश्वास ही वड्डी चीज, विश्वास ही सब तो वड्डी चीज। असी केवरी आके गुरुद्वारे आके गुरु साहब के मथा भी टेक, पर मथा टेक के भी
ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ? ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ, ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਦੇ ਪਰ ਹੁਕਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ, ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਟੇਕਾਂਗੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਠੀਕ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਵਚਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ

अपनी शान पिछर लक्ष बोलिया हे प्रभु मैं ना मरा। चलो गल हो गई, तू कह दिता मैं ना मरा, मैं प्रधान होगी जो सतनाम श्री तेरी मंग दे विच मैं

अगला सवाल कि एक भोजन नाम रस वाला किवें छकिया जांदा है, किवें पीता जांदा है। हुण भोजन भी मिल गया, पता भी चल गया भोजन कित्थे है, ए भी समझ आ गई भोजन बड़ा श्रेष्ठ, पर छकिया किवें जांदा है, किवें पीता जांदा है, उहदी जुगत दसदे ने।

कोई रचना खाली ना रहे, पहला दास बोलेगा, दूसरी बार मेरे वीर, तीसरी बार मेरी भैन। दो ही पंक्तियां बोल के समाप्ति।

अगली जो पंक्ति है ना बहुत जरूरी है। एक गुरसिख के कर्तव्य लई है, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजय व्रत गोर मड़ी मट भूल न माने। आओ सारे पढ़िए जी।

कीमत अदा नहीं हो सकती जिस वस्तु दी ओ मिल जावे ता उसनू प्राप्त कहिंदे हन। आख्या तू 84 लख जूना विचों त्रिगड़ जूना विचों दुख भोगदा होया अकाल पुरख दी रहम ते नदर होई तैनू मनुखा देही प्राप्त होई है ते एहो ही तेरी बारी है एही वक्त है तू इसनू जप जप के सेवा करके प्रभु दी प्राप्ति कर लवे जन्म मरण तो रहत हो जावे ते जे ना कीता तो फिर ए अवसर कदे मिलेगा नहीं तैनू इसलिए आप बख्शिश करदे हन।

जो हरी जस विच हरी दी कथा वार्ता विच वाहिगुरु दी याद विच गुजरदा है ओही लाभदायक है। ओही तेरे अंग संग होके तेरी सहायता करेगा।

साहब जी कहन लगे मरदाने आ, जदों कोई आदमी गोलक विच रुपया पांदा है ते खड़ाक ज्यादा हुंदा ते जोगी राज अंदाजा लगा लैंदा है कि हुण किसी ने रुपया पाया, रुपये तो घट पैसे पाए घट खड़ाक होया ते अंदाजा लगा लिया कि इन्ने क पैसे पाए ने। मरदानिया इस जोगी राज ने अखां तां बंद कीतियां ने पर ए परमेश्वर नाल नहीं संदूखड़ी दे नाल जुड़िया होया, ए तां अखां बंद करके पैसे दा हिसाब पिया लगांदा है कि संदूखड़ी विच किन्ने क पैसे जमा हो गए। मरदाना कहन लगा महाराज ये किस तरह हो सकता है। साहब जी कहन लगे जे देखना है ते जेड़ी संदूखड़ी एदे सामने पई है चुक के एदे पिछे रख दे। मरदाना उठे है उस जोगी राज दे सामने संदूखड़ी चुकी ओदे पिछे रख दिती अपनी जगह ते आके फिर बैठ गए। थोड़ी देर दे बाद उस जोगी राज ने अखां खोलियां बैठियां लोकां वाल देखिया ता ए गल कही ऐ संत जनो आज हम आप लोगों को तीनों लोकों की बातें सुनाएंगे। आज हम ब्रह्मपुरी में गए वहां वेदों की कथा हो रही थी, फिर हम विष्णुपुरी में गए

ते गुरु साहिबानी उस वक्त ए शब्द उचारिया, काल नाही जोग नाही नाही सत का डब, थान सट जग भ्रिष्ट होए डूबता इव जग। कोई जोग नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई सच नहीं, इस करके ए सारी दुनिया भ्रिष्ट हुंदी जा रही है, ए सारा संसार डुबदा जा रहा है। कल मैं राम नाम सार ऐ भाई पखंड छड दियो, कलयुग दे विच सिर्फ उस परमेश्वर दे नाम ने सहायता।

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना है कि मैनू तिना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते जदके तेनु ए पता नहीं तेरी संदूकड़ी किथे है ते गुरु साहब ने कहा जो अपनी बाणी विच बयान कीता है साहब जी उस जोगी राज नु की

पाछे कछू ना सूझे। तेनू अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई हुई है। पिछा देखिया इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नू क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनू संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नू कहना है।

भगत कबीर सावदा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण ए बड़ा खुश होया, क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर, दामोदर भी भगवान का एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई, बिंद्रावन, ते बिंद्रावन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे, ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटियां दे विचों एक एक साधु बाहर निकलिया, जिन्हां चिट्टियां धोतियां बन्नियां ने, गलां विच माला, हाथ विच माला, ते एक हाथ विच चिट्टा लिशकदा होया लोटा फड़े है। ए तुरदे तुरदे इस सेठ दे कोल आए ने। इस सेठ नू गली बाती जंगल विच लै गए ने। उथे जाके इन्हां तिन्हां साधुआं ने जो कुछ सेठ दे कोल सी ओ खोलिया। इस सेठ नू जानू मारन लगे ने, पर किसे तरह ए सेठ अपनी जान बचा के जंगल विचों भज निकलिया, ते कबीर साहब दे घर चला गया। एदे पाटे कपड़े देखे, ते कबीर साहब कहन लगे, भाई की गल है, तेरा बहुत बुरा हाल है, तेरे कपड़े पाटे नी। कहन लगा कबीर साहब, मैनू तीन साधुआं ने लुट लिया, मैं तां संत समझे, पर उन्हां ने मेरी सारी माया खो ली, मैनू जानू मार देण लगे सन, पर बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के मैं उत्थों भजे हां। ते कबीर साहब कहन लगे, भाई ओ संत नहीं, पता है ओ कौन ने? कबीर साहब जी अपनी बाणी विच उन्हां बारे बयान कर

मैं ता मथा टेकिया कि ए ता पहुंची हुए संत ने। ते कबीर साहब कहन लगे भाई ए उन्हां दियां गुप्त बोलियां ने जिन्हें क्या नारायण उन्हें तेनु देख लिया ते उची सारी अपने साथियां नु क्या नारायण मतलब के कोई बंदा आया ओदी आवाज सुन के दूसरे ने क्या दामोदर के जेड़ा बंदा आ रहा है एद कोल माया भी चंगी लगती ते तीसरे ने क्या बिंदरा बन वो कहन लगा कोई नहीं आ जान दे जंगल विच ले जा के इनू जानू मार के ते लुट लवांगे ते ओ सेठ कहन लगा कबीर साहब पर इना दा पहरावा एडा सोना ते काम इन्ने माड़े ते कबीर साहब जी फिर अपनी बाणी विच इन्हां लोकां बारे इवें बयान करदे।

गली जिना जप मालिया जिना ने गलां विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी पग ते हथां दे विच चिट्टे चमकदे हुए लोटे फड़े हुए ने।

बसुधा खोद करे दोई चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने, लकड़ा भी धो के बालदे ने, पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाणे।

अभिमान दे भरे होए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डूब लेंदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया, गंगा दे पार जाना सी, बेड़ी दूसरे पासे सी, इस वास्ते इस पेखी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया। गल्लां बातां करदा रहा, बेड़ी आई, ओ धनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, वो माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी

दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांस

समझ लिया कि मेनू थैली लुकांदे आ, नामदेव ने देख ले। पेखी संत कहन लगा, सेठ जी ओ जिड़ा नामदेव सामने बैठा सदा पे आए ने, तुहाडी वासली ओदे कोल है। सेठ उठिया ते भगत नामदेव दे गल पै गया, कहन लगा मेरी थैली दे। होर भी दो चार आदमी इकट्ठे हो गए ते सारे भगत नामदेव नूं कुट्टण लग पए। ओ जिहड़ा पेखी संत सी अपना वड्डापण दसण वास्ते अपने आसन तों उठिया, उन्हां लोकां नूं कहण लगा नामदेव नूं मारो ना, जे इन्हें माया वाली थैली चुकी है ते आपे परमेश्वर इनू सजा देवेगा। इन्हें इन्नी गल कही, उधरों एक हवा दा बुला आया, उस पेखी संत दा आसन उड़िया ते थलों माया वाली वासली नजर आ गई। उस सेठ ने ते लोकां ने नामदेव नूं छड़ दिता ते उस पेखी संत नूं फड़ के कुटन लग पे।

है पाई काहे को कीजे ध्यान जपन जे तुहाडा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बहंदे हो।

तितर दा रंग बड़ा सोहना हुंदा है। सिंह च भोजन जो नर जाने, भगत नामदेव जी कहंदे ने कि जेड़े लोग जेड़े इंसान तितर दे बारे जानदे ने कि रंग बड़ा सोहना पर खांदा की ए कीड़े ते मकौड़े, ऐसे ही ठग दियो बखाने। इसी तरह इन्हां संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्मे लम्मे चोले बनाए, हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असीं घर बार छड्डे आ, असीं त्यागी, पर इन्हां संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े। इसे तरह ए संत चोले ता लम्मे लम्मे पाए ने चिट्टे रंग दे, पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह

पर नामदेव दे स्वामी ने मेरे गलों ये झगड़ा ला ले है भाई, मैं पखंड नहीं करदा। उस परमेश्वर दा नाम जपया ओदे नाल मिल गया है भाई, तुसी भी मन करके ओदा नाम जपो, तुसी भी ए ना पखंडा।

हर जियो निमाणिया तू मान। हे हरि वाहिगुरु, तू निमाणिया दा किवें मान है? पातशाह कहिंदे ने आड़ दम को छिपरो, अद्धी कौडी दा छिंबा होयो लखीना, लखां दा हो गया। पर किवें? भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने